0: ये पहले से ही मांगता हूँ माफी।
1: WCMC FM Holly Springs 99.9 FM HD4 W270 DT Durham 101.9 FM WDUR Durham 1490

रेडियो सिटी पर सुनिए द हम्मा सॉन्ग, संग बाय जुबिन नौटियाल, शाशा तिरुपति, कंपोज्ड बाय एआर रहमान, रिक्रिएटेड बाय बादशाह एंड तनिष्क, एंड रिटन बाय महबूब।

साल नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

0: I'm sorry.
1: क्या कहा आपने?
0: I'm sorry. मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया.
1: कोई बात नहीं सेनोरिटा, कोई बात नहीं. बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्यूल्स नॉर्थ कैरोलिना,
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

मजनी हो, सादिसी हो, आशिकी हो, मुझे पता है तुम किस गली हो, किस मोहल्ले जात की हो, मुझे पता है तुम खुश नहीं हो, दिखती तो आजाद भी हो, पर दुनिया तो तुम्हीं से चलेगी, मैं एक लड़का हूँ तुम मेरे बाद भी हो।

हरमीत, तुझे देख के पता है क्या लगता था? कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा। कितना पोटेंशियल है तुझ में। क्या हो गया है? कुछ बन क्यों नहीं पाया तू?

0: कहूंगा कि मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM 99.9 FM SD 44 1090 AM पक्का देसी पक्का लोका।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM। पक्का देसी, पक्का लोकल।

0: हेल्दी लिविंग मीन्स इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. Pakka Desi, Pakka Loka.

साउथ एशिया रेडियो 10 to 12 नून एवरी संडे, संडे के संडे। You want music from all countries of South Asia? Listen to Geet

0: तुझको समझूं सबकी माँ, किसको मानूं अपनी माँ। समझ फरमाइए कि तुझको समझूं सबकी माँ, तो किसको मानूं अपनी माँ, और तन की माँ वतन की माँ, या तू मेरे मन की माँ। खातिनो हजरात, सबको पहले तो जन्माष्टमी का बहुत बहुत बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और मुबारकबाद और बधाइयाँ। और ये नगमा भेजा था कृष्ण जी की जयंती पर मोहतरमा ज्योति करीर साहिबा ने, और उन्होंने कहा है कि जन्माष्टमी सबको बहुत बहुत बहुत बहुत मुबारक हो। वी आर योर होस्ट सफरोस्ता जान कॉलवेल एंड रवि चिरिकुड़ी। 10 से 12 सुबह, 10 से 12 शाम हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, एंड दिस इज गीत बाजार रेडियो नायरा की पेशकश।
1: You are listening to Geet Bazaar on Radio Naira 101.9 FM with new double broadcasting power. Also 99.9 HD4 and 1490 AM Raleigh Durham.
2: And don't forget to download the Radio Naira app so you can listen to Geet Bazaar and all of Radio Naira's wonderful Desi programming easily and from anywhere on your phone and other devices. The Radio Naira app can be obtained from the App Store and the Google Play Store. So it's really easy. Just download it and start listening.
0: अगला नगमा बहुत खूबसूरत मोहतरम जनाब मो हसन साहब की जानिब से आया है मोहम्मद रफी की आवाज में। क्या बात है बिठाकर दिल की महमिल में, कहा तुम पास हो दिल के। देखिए कभी तो वो दिल में बिठाते हो, कहते हैं तुम दिल के पास हो, पास थोड़ी हो तो दिल में ही हो भाई। बिठाकर दिल की महमिल में, कहा तुम पास हो दिल के, मुझे मालूम है तुम दूरियां रखते हो मिल मिल के। यू आर लिसनिंग टू

मेरे दिल की ये फितरत है उदासी छाई रहती है। समाथमाएं कि मेरे दिल की ये फितरत है उदासी छाई रहती है और तुम्हारी एक उदासी ने भरम रखा मेरे दिल का। हजरत जयपुरी का कलाम, शंकर जयकिशन की मौसीकी, ब्रह्मचारी फिल्म का ये नगमा था। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी में दुल्हन बनाकर रखूंगा मैं दिल के पास। मत हो मेरी जान उदास। उदास तो होंगे ही भाई, क्योंकि आप दिल के झरोखे में बिठा कर कह रहे हैं दिल के पास। मोहतरम जनाब मोहसन साहब ने ये फरमाइश की, बहुत खूबसूरत। तो अगली फरमाइश भी इनकी बहुत खूबसूरत, देखते हैं कितना वक्त हमारे पास होता है। मोहतरमा फरीदा शेख साहिबा ने भी जन्माष्टमी के हसीन मौके पर बहुत खूबसूरत नगमा भेजा है लता की आवाज़ में। क्या बात है। बांसुरी आके भाग पर अचरज करती क्यों, अरे बांसुरी आके भाग पर अचरज करती क्यों, लाखों छेद छिदाए तब लगी किशन के मुंह।

बांस कटे तो बांसुरी लगे किशन के हाथ। अरे बांस कटे तो बांसुरी लगे किशन के हाथ, और दर्द सुनाए आज वो और चोट पुरानी बात। कवि प्रदीप का कलाम था और मौसीकी थी सी रामचंद्र की। फिल्म नास्तिक 1954 की ये फिल्म है। फिल्म तो अपनी जगह थी लेकिन नगमे उसके एक से एक बढ़ के थे। लता मंगेशकर जी ने इस नगमे को पेश किया था। मोहतरमा फरीदा शेख, आपकी हर फरमाइश सनाकों पर मौके मसले से आप भेजती हैं। फरमाइश आपकी आई है कैरी नॉर्थ कैरोलिना से, और अब एपेक्स नॉर्थ कैरोलिना से मोहतरम जनाब चिरंजीत लाल जी ने मोहतरमा कंचन लाल जी की फरमाइश। ये भी मोहम्मद रफी की आवाज़ में है। ओह ये नगमा है, अच्छा ये बहुत प्यारा नगमा है, ज़रा सुने। इसकी कई फिल्मों में, नई फिल्मों में भी नकल हुई है, लेकिन आप याद रखेंगे कौन सी वाली है, आप मुझे मालूम है। छोरी छलकत गागरी किसकी प्यास बुझाए, समात फरमाइएगा, ये भी मेरा नया दोहा है, इससे पहले वाला भी था। अरे छोरी छलकत गागरी किसकी प्यास बुझाए, मारे कहना आँख तो मटकी चटकी जाए। यू आर लिसनिंग टू गीत बाजार।

ब्रिज बाला की बालियां कृष्ण के हाथ जो आई, अरे ब्रिज बाला की बालियां कृष्ण के हाथ जो आई, हाला बना के चांद का बाला को लौटाई। राजेंद्र कृष्ण का कलाम कल्याण जी आनंद जी की मौसीकी ब्लफ मास्टर वाज 1963 की ये फिल्म थी, जिसका ये खूबसूरत गाना था मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। चरणजीत लाल जी एन कंचन लाल जी की फरमाइश पर बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम एंड मोहतरमा। एपेक्स नॉर्थ कैरोलिना से आपकी फरमाइश आई। अब कराची यानी के पाकिस्तान से फरमाइश आई है सुचित्रा टेक चंदानी की। अच्छा, और उन्होंने एक भजन भेजा है जो पाकिस्तान का बड़ा मशहूर अपने वक्त का भजन रहा है, बल्कि आज भी उसकी फरमाइश आती है। जैसे देखिए आपके सामने आ चुकी है सुचित्रा टेक चंदानी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज है टीना सानी की। पहले सबसे पहले इसको बिल्कीस खानम ने गाया था, टीना सानी ने आगे जाके इसको मशहूर किया। मौसीकी आशिक अली खान की थी और कलाम था इनका, वो कितना पुराना, असद मोहम्मद खान का। आज के बच्चे तोड़ खिलौने समाप्त सुनाइए, छोटी सी बात है, छोटा सा शेर है, लेकिन अगर अच्छी लगेगी अगर आप गौर फरमाएंगे कि आज के बच्चे तोड़ खिलौने, कहते हैं अब चांद चाहिए।

रंग बरसात ने भरे कुछ तो, नासिर काजमी का कलाम है जहां तक मुझे इल्म है। रंग बरसात ने भरे कुछ तो और जख्म दिल के हुए हरे कुछ तो, शैलेंद्र का कलाम, सलील चौधरी की मौसीकी और दो बीघा जमीन, ये फिल्म का नाम था, 1953 की फिल्म थी ये, 53, वाओ। मन्ना डे की आवाज़, लता मंगेशकर जी की आवाज़ और मोहतरमा पूर्णिमा गुप्ता जी की फरमाइश और इम्तिहान। मोहतरम जनाब मोहसिन साहब, क्या बात है, वक्त हमारे पास है तो क्यों ना हम आपका नगमा पेश करें, दूसरी फरमाइश, बहुत खूबसूरत है, हाय हाय क्या बात है। हाय परवाने न जा महफिल अंधेरी देख कर, समाप्त फरमाइए मो भाई, आपको पसंद आएगा कि हाय परवाने न जा महफिल अंधेरी देख कर, शायद हो रोशन दिया सूरत को तेरी देखकर। यू आर लिसनिंग टू गीत बजार।

20 साल के बाद, यानी बात कर रहे हैं हम 1982 की। लता मंगेशकर की आवाज, मोहतरम जनाब मो हसन साहब एंड मोहतरमा सलमा हसन साहिबा की नवाजिश और गुजारिश राली से आई है। और अगली फरमाइश मोहतरम जनाब चरणजीत लाल जी, मोहतरमा कंचन लाल जी की एक और है, एपेक्स नॉर्थ कैरोलिना से। जन्माष्टमी के हसीन मौके पर इससे हसीन नगमा और क्या हो सकता है भला। आप ज़रा समाज फरमाएं और देखें, इसमें शकील ने कलाम लिखा है, मौसीकी नौशाद की है, वगैरह वगैरह। और आप समाज फरमाएं इस नगमे को। जन्माष्टमी सबको मुबारक हो बहुत बहुत। एक कदम पर पनघट लेकिन लंबी उसकी राह। समाज फरमाएं, ये भी नहीं आई दुआ है। एक कदम पर पनघट लेकिन लंबी उसकी राह, इससे तो प्यासे मर जाएं, क्यों हों मगर तबाह।

हम तो अब ना जाएंगे, अरे हम तो अब ना जाएंगे पनघट घूंघट काढ़ कर, हम तो अब ना जाएंगे पनघट घूंघट काढ़ कर, उनको कोई पहना दे घूंघट, देखें नजरें गाढ़ कर। शकील बदायूनी कलाम जैसे पहले अर्ज किया जा चुका है, नौशाद की मौसीकी जैसे पहले अर्ज किया जा चुका है। मुगले आजम 1960 की ये फिल्म थी, ऑल टाइम हिट। इसका ये नगमा था लता मंगेशकर की आवाज़ में, और जब भी इस गाने को सुनते हैं लता जी की आवाज़ तो कानों में जाती है, लेकिन जहन में एक खूबसूरत फिगर और एक खूबसूरत शक्ल सामने आती है, और वो है मधुबाला की। मोहतरम जनाब चरणजीत लाल जी और मोहतरमा कंचन लाल जी की फरमाइश है, मधुबाला मेरी पसंदीदा एक्ट्रेस हैं, जबकि पापा जी के ज़माने की होंगी, लेकिन मुझे अभी तक पसंद नहीं, क्योंकि उनके फ़ोटो तो वैसे ही हैं, एक फ़ोटो मेरे ऑफिस के दरवाजे पर लगा है अगर आप देखना चाहें। मोहतरमा ज्योति करीर साहिबा की फरमाइश मॉरिस विल से आई है, और ये भी जो है वो जन्माष्टमी के मौके पर है। हैप्पी बर्थडे कृष्ण जी, लीजिए समात फरमाइए ये नगमा इस शेर के साथ। जमुना तट पे ठाड़ी राधा, ठाड़ी का मतलब है खड़ी हुई, जमुना तट पे ठाड़ी राधा ताज का रूप बनाए, ताजमहल आप जानते हैं जमुना पर ही है, जमुना तट पे ठाड़ी राधा ताज का रूप बनाए, और काला ताज किशन की सूरत नदी पार कब आए।

और मैं कहता हूं ऊपर वाला कभी ना करता जानबूझकर फेर, अरे ऊपर वाला कभी ना करता जानबूझकर फेर, जीवन मौत समय पर होवे ना जल्दी ना देर। यू आर लिसनिंग टू गीत बजान।

0: आपकी हर फरमाइश सराखों पर। आवाजें थी मोहम्मद रफी, अफरोज ताज और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम था कुछ ना पूछो। फरमाइश करने वाले थे नेवर माइंड। जैसे मैंने अर्ज किया, आपकी हर फरमाइश सराखों पर।
1: We respect your every request on Geek Bazaar, South Asia Radio, every Sunday 10 to 12 noon.

0: Naira 101.9 FM Rale Dharam. Also available on 99.9 FM, HD4 and 1490 AM. Pakka Desi.
1: 99.9 Naira. Every Sunday, 10 to 12 noon. Carry to Karachi, Rally to Rajasthan, Mumbai to Mombasa, Naples to Nepal, Missouri to Missouri, Niagara to Agra, Alabama to Allahabad, La Jolla to Lahore, Nevada to Noida, Carolina to Kerala, Chicago to Chicago, Louisiana to Louisiana, Oregon to Aurangabad, Tashkent to Kasgan, Utah to Eta, Texas to Texla, Virginia to Varanasi, Morrisville to Mauritius, Delaware to Delhi, Oklahoma to Okla, Dublin to Dubai, Baltimore to Butler House, Georgia to Sharjah, Florida to Murazabad.
2: This is Geet Bazaar Radio, Naira ki Peshkash. We are your hosts, Afroz Star, John Caldwell and Ravi Chirukli. Aur saath mein ye bhi kehta chalun, 10 se 12 subah, 10 se 12 sham. Hum aapki khidmat mein maujood hote hain, itwar ke din.
3: You are listening to Geet Bazaar on Radio Naira 101.9 FM with new double broadcasting power. Also 99.9 HD4 and 1490 AM Raleigh Durham.
4: And don't forget to download the Radio Naira app so you can listen to Geet Bazaar and all of Radio Naira's wonderful Desi programming easily and from anywhere on your phone and other devices. The Radio Naira app can be obtained from the App Store and the Google Play Store. So it's really easy. Just download it and start listening.
1: Khatino Hazrat, main kahunga pehle ke dil ki lagi ko kya kahiye, sabko hasa ke chhodti hai. इसमें कोई शक नहीं, दिल लगी भी एक ऐसी चीज है कि लोग कहते हैं, हम कहते थे ना पहले ऐसा ना करना. मोहतरम जनाब सुखबीर सिंह और सुबीर कौर की फरमाइश आई है श्रूसबरी न्यू जर्सी से. वाह, मुकेश और लता की आवाज में आपने जो फरमाइश की है लगन लगन से लगी हुई है. और कह रही थी कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ कह रहे थे कि हमको आपके प्रोग्राम से बड़ी लगन है. मैं कहता हूँ कि जब मुझको प्यार था मेरी हस्ती चमन लगी, जब मुझको प्यार था मेरी हस्ती चमन लगी, लेकिन लगन लगी तो मन में अगन लगी. यू आर लिसनिंग टू गीत बजा.

लगन से पहले कोई भी ना मेरे पास हुआ, अरे लगन से पहले कोई भी न मेरे पास हुआ, और लगन लगी तो दुनिया को अब एहसास हुआ।

तेरी आंखें मुझको लेकर कहां गई ना जाने, समझ फरमाएं, अरे तेरी आंखें मुझको लेकर कहां गई न जाने, मेरा खोया जाए तवाजुन क्यों लाया मैं खाने। यू आर लिसनिंग टू गीत बजा।

मन की लगन से बढ़कर कोई लगन नहीं। अरे मन की लगन से बढ़कर कोई लगन नहीं। जैसे जलन अगन से बढ़कर जलन नहीं।

0: दिल लगी ही दिल लगी में दिल गया, और दिल लगाने का नतीजा मिल गया। फिर सुने, दिल लगी ही दिल लगी में दिल गया, और दिल लगाने का नतीजा मिल गया। मैं तो रोता हूं कि मेरा दिल गया, और तू क्यों हंसता है, तुझे क्या मिल गया।
1: यू आर लिसनिंग टू गीत।

दिल को लगाना कोई भी मुश्किल तो नहीं है। समझ तो मैं कि दिल को लगाना कोई भी मुश्किल तो नहीं है। हर दिल को अपने दिल से आजाद कीजिएगा।

अब शम्मा दिल जले का पता पूछ रही है। समझ फरमाइए कि अब शम्मा दिल जले का पता पूछ रही है, परवाना राख बन के जो अब हवा हुआ।

पौधा लगा के कोई जाने किधर गया। देखिए नया ख्याल है लेकिन बात वही है। पौधा लगा के कोई जाने किधर गया, उसकी लगन में पौधा जल जल के मर गया।

सजन से कर लगन मन से जो अपना जी जलाना है। समाज फरमाए कि सजन से कर लगन मन से जो अपना जी जलाना है, कि जैसे खारजारों में कहीं बेला उगाना है।

कहते हैं पली फूल में मलिका बहार की, कहते हैं पली फूल में मलिका बहार की, उसकी पड़ी नजर तो बड़ी तीर सी लगी।

0: करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुधन चीर भी टकर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ।

गोरी हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, हो नटखट हो खटपट हो पनघट हो झटपट, पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ तोरे नैना।

0: सवरिया
1: ओ गुजरिया
0: ओ सवरिया
1: ओ गुजरिया
0: ओ सवरिया।
2: सोचा है अपना वक्त से मैं दिल लगाऊंगा, समाप्त फरमाएं। सोचा है अब ना वक्त से मैं दिल लगाऊंगा, जाता है तो वो लौट के पहचानता नहीं। इतनी जल्दी वक्त गुजरता है हुजूर वाला कि मैं बता नहीं सकता आपको। किशोर कुमार की आवाज आपने भी समाप्त फरमाई थी और साथ साथ फिल्म का नाम था हैफ टिकट। और इसके बाद वाला नगमा जमील सादिक साहब की फरमाइश कहाँ से, फेटविल से। अच्छा, फिटविल से जमील सादिक साहब ने फरमाया है कि चलते चलते जो नगमा होता वो मेरा ही होना चाहिए और जन्माष्टमी के मौके पर एक प्यारा सा भजन होना चाहिए। तो जमील साहब देखिए, ये भजन हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं, लेकिन मैं बता दूं पहले कि वक्त पानी की तरह से हाथ से निकल चुका है। जैसा आप जानते हैं 2 घंटे 2 मिनट में गुजर गए, और वक्त अगर अच्छा खासा होता है तो बड़ा बेवफा होता है, फौरन आते ही चला जाता है और अपने नखरे दिखाता है बड़े बड़े। तो उसको कैसे रोका जा सकता है भला? वक्त को कोई रोक नहीं सकता, सिवाय इसके कि मैं फिर कहूंगा कि तुमको हमने ऐसा देखा जैसे देखा जा सकता था, फिर भी प्यारे 2 घंटों में कैसे देखा जा सकता था। चलते चलते मेरा कलाम भी आप सुनते जाएं, लेकिन मैं कहूंगा कि वी आर योर होस्ट सफरोस्ताद जॉन कॉलवेल एंड रवि चिरकुड़ी। 10 से 12 सुबह 10 से 12 शाम हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं मेरे दोस्तों। एंड साथ साथ कहूंगा यू आर लिसनिंग टू गीत बाजार रेडियो नायरा की पेशकश। अच्छा आपके साथ वक्त निकला, अच्छा लगा। और चलते चलते मैं वक्त की शान में ये शेर कह दूं, या वक्त की बुराई में जैसा आप कहें, अरे मुश्किल से वक्त पाया पल में निकल गया। समाप्त फरमाएं गौर से कि मुश्किल से वक्त पाया पल में निकल गया, मोहसिन मेरा अजीज लो नजरें बदल गया। मोहब्बत

0: हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब, मेरा नाम है नायाब मिढा एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो नायरा. एंड गेस व्हाट, आई एम ब्रिंगिंग माय शो राजकुमारी, माय पोएट्री स्टोरी टेलिंग शो राजकुमारी टू रैले दिस अक्टूबर 2nd. कैच मी लाइव एट द गार्नर परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर प्रेजेंटेड बाय ओहो प्रोडक्शंस. टिकट्स जल्दी जल्दी निकल रहे हैं तो ग्रैब योर्स टुडे. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव ऑलरेडी. सी यू देयर. थैंक यू सो मच. जल्दी मिलते हैं कविताओं के साथ, कहानियों के साथ.
1: हम सब दिवाली इज ब्रिंगिंग अलाइव द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स एंड यू डोंट वांट टू मिस इट. गेट रेडी फॉर एन अनफॉरगेटेबल सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन कल्चर फीचरिंग स्पेक्टेक्युलर परफॉर्मेंसेस, डिलिशियस फूड, एक्साइटिंग शॉपिंग, फैमिली फन एंड सो मच मोर. Bring your family, bring your friends, and come experience the magic of Hum Sub Diwali. And calling all musicians, composers, and creative talents. Could you create the sound of Hum Sub? Enter our exciting Hum Sub theme song composition competition and let your music become part of the Hum Sub story. For complete details about the competition and Hum Sub Diwali, visit humsub.org.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM 99.9 FM SD 44 1090 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: barrel.
1: Yeah. भाई तेरा बस लिख गाने हर दुनिया देती ताने वैसे इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

मैं बेकार इंसान हूँ, आयरा खान रिकॉल्स फीलिंग यूजलेस फॉर नॉट अर्निंग एट द एज ऑफ 27. This is Bollywood Bliss with me, Bharti, on your tune frequency. Naira Naira Khan opened up about feeling guilt and frustration a few years ago over not earning money. वो कहती हैं, मैं 26-27 साल की हूँ, मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर बहुत पैसे खर्च किए हैं और मैं दुनिया में बेकार इंसान हूँ. मैं कुछ नहीं कर रही हूँ. She shared reflecting on her struggles before starting her mental health NGO, Agastu Foundation. Amir Khan, who was present, clarified that Ayra meant she was not earning money or doing something worthy. However, he emphasized that he never जस्ट हर बेस्ड ऑन अर्निंग्स. वो कहते हैं, आप पैसे कमा रहे हो या नहीं वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप काम अच्छा कर रहे हो ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है. आमिर सेड, एडिंग मनी इज एक्चुअली अ प्रॉमिसरी नोट दैट एवरीवन डिसाइड्स टू एग्री और एल्स इट जस्ट अ पीस ऑफ पेपर. एक्चुअली या यू नो व्हाट, इंडिया में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. मतलब देयर आर सो मेनी यंगस्टर्स हु आर अनएम्प्लॉयड, हम उन्हें बेरोजगार कहते हैं, नल्ला कहते हैं चढ़ाने के लिए, एंड दे आर सो डिप्रेस्ड एंड सो अनहैप्पी विद द लाइफ. उनको सबको लगता है दैट दे आर यूजलेस. 30-30 साल की उम्र हो गई है, किसी के पास नौकरी नहीं है, दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट अ जॉब, गेट मैरिड. इट्स सो टफ हियर, यू नो. आई थिंक फाउंडेशन सही नहीं है, बेसलेस माहौल है उन लोगों का इस वजह से. पर कई बार इस डेस्टिनी किस्मत को भी हम ब्लेम कर सकते हैं. यू नेवर नो हाउ इट वर्क्स, यू नो, बट स्टिल वी शुड बी पॉजिटिव एवरी टाइम, नो मैटर व्हाट हैपेंड टू आवर लाइफ एंड नाउ व्हाट हैपेंड टू आवर सेल्फ. वी शुड बी पॉजिटिव कि कुछ तो अच्छा होने वाला है, बिकॉज एवरीथिंग इज डिसाइडेड एंड डेस्टिन फॉर योर गुड ओनली. दिस इज टाइम फॉर यू टू लिसन अमेजिंग सॉन्ग्स नाउ. आई विल बी बैक ओनली.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: नए साल की शुरुआत सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स के साथ. ट्यून इन टू रेडियो नायरा 2025 की परफेक्ट शुरुआत.
1: प्यार है इंडिया से, यारी है मशीन से, उड़े चाहे आसमां में, दिल है जमीन पे.

नहीं, इस फिल्म ने अल्लू अर्जुन को दिलाई थी असली पहचान। कम बजट की मूवी ने छापे थे 8 गुना नोट। सुकुमार पुष्पा से पहले भी अल्लू अर्जुन के साथ काम कर चुके हैं। पुष्पा 1 और पुष्पा 2 के बाद अल्लू अर्जुन की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है, लेकिन इस फिल्म के आने से पहले भी एक्टर फिल्म इंडस्ट्री में कई सुपरहिट फिल्में दे चुके हैं। आज बात मशहूर डायरेक्टर सुकुमार के साथ उनकी उस फिल्म की कर रही हूँ जो कम बजट की फिल्म होने के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल साबित हुई थी। इतना ही नई मूवी में साउथ सुपरस्टार के एक्शन के अवतार में भी उनका बहुत तारीफ हुआ था। ऐसा भी कहा जा सकता है कि इस फिल्म ने अल्लू अर्जुन को स्टार से सुपरस्टार बना दिया था। फिल्म की सक्सेस का फायदा एक्टर के साथ साथ डायरेक्टर को भी मिलता है। साल 2004 की बात है जब अल्लू अर्जुन और सुकुमार को पहली बार एक साथ काम करते देखा गया था। फिल्म का नाम था आर्या, जो बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन करने में सक्सेसफुल रही थी। साउथ एक्टर की इस फिल्म में उनके काम को एक्टर्स ने बहुत पसंद किया था और 5 साल बाद आर्या का दूसरा पार्ट भी रिलीज हुआ था। तो दिस इज हाउ ही गॉट द फेम एंड विद दिस टू सुकुमार ओनली। वेल, दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम दी शो। अगली बार आपसे मिलूं। टिल देन टेक केयर ऑफ योर लवली।

0: ऐसा नहीं होने वाला, नहीं ये जल्दी पिघलने वाली। तो ठीक है मैडम, कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम।
1: सेलफोन
2: चेक,
1: मेकअप
2: चेक,
1: जूस
2: चेक,
1: इडियट

गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड मैं हूं सबके दिलों का चिराग. मेरा नाम है आरजे पराग. 7 से 10 में रहता हूं आपके साथ, मिटाता हूं आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूं आपके मूड को रिफ्रेश. वेल, कैसे चल रही है आपकी आज की वीकेंड की शाम? शाम के बारे में कहूं मैं तो मौसम काफ़ी सुहाना हो रखा है और ऐसे सुहाने मौसम में एक कप गर्म चाय की प्याली मिल जाए, वो भी अदरक वाली, तो मज़ा ही आ जाए. और साथ में कुछ पकौड़े मिल जाए तो क्या ही कहने. और वीकेंड के बारे में मैं कहूं तो यार, वीकेंड की वाइब होती है, लेकिन वीकेंड के दिन इतने जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, ऐसे वीकडेज के दिन नहीं होते हैं ना. तो स्ट्रेस नहीं है, काम का कोई लोड नहीं है, बस सब लोग एंजॉय कर रहे हैं. एंड एंजॉय करना भी चाहिए फैमिली के साथ, लवन के साथ, और कभी कभी खुद की कंपनी भी एंजॉय करनी चाहिए. सुनते ही इस शाम का प्यार भरा पहला ये गाना, बने रहिएगा रेडियो.

हरमीत, तुझे देख के पता है क्या लगता था? कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा। कितना पोटेंशियल है तुझ में। क्या हो गया है? कुछ बन क्यों नहीं पाया तू? What happened?

0: मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

0: Armito on the mic, writing what I feel.
1: दो अक्टूबर को क्या हुआ था? मूवी देखी थी, पाव भाजी खाई थी, पंजी गए थे.
2: रॉन्ग. दो अक्टूबर को गरबा नाइट है. अरे भूली गया, आ डेट तो याद रखवानी छोए. गरबा लवर्स, आर यू रेडी? ऑन अक्टूबर बीजी रिधम अने रास लेने आवे छे गरबा नाइट. चनिया चोड़ी अने केडियो रेडी राखो. एपेक्स मा थवानी छे फुल ऑन गरबानी धमाल. जॉइन अस फ्राइडे अक्टूबर 2nd एट 7 PM एट हवेली एपेक्स. Dance to the incredible beats of Amruta Manke and Nimesh Nagar with live music, delicious food, family, friends, and raat bhar garbani moj. Early bird tickets only until September 7th.
1: Tickets on Sulekha or Check the Rhythm and Ras Flyer on Radio Naira's Facebook, Instagram or RadioNaira.com. One beat, one circle, one community.
3: हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब. मेरा नाम है नायाब मिढा एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो नायरा. एंड गेस व्हाट, आई एम ब्रिंगिंग माय शो राजकुमारी, माय पोएट्री स्टोरी टेलिंग शो राजकुमारी टू रैले दिस अक्टूबर 2nd. कैच मी लाइव एट द गार्नर परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर प्रेजेंटेड बाय ओहो प्रोडक्शंस. टिकट्स जल्दी जल्दी निकल रहे हैं तो ग्रैब योर्स टुडे. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव ऑलरेडी. सी यू देयर. थैंक यू सो मच. जल्दी मिलते हैं कविताओं के साथ, कहानियों के साथ, किस्सों के साथ.
4: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स.
5: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा.
4: एंजॉय फ्रेश सिजलिंग वेज एंड नॉन वेज स्टार्टर्स पेयर्ड परफेक्टली विद ओवन फ्रेश चूर चूर नान मेड विद लव एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स.
5: प्लानिंग योर बर्थडे, वेडिंग, ग्रेजुएशन पार्टी, कॉर्पोरेट गैदरिंग और फैमिली सेलिब्रेशन.
4: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
5: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
4: Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.

है रेडियो नारा पर निर्वाणा नाइट्स एंजॉय किया आपने ये गाना। गाना था वाकई में काफी बेहतरीन एंड इस गाने ने सेट कर रखी है इस वीकेंड की वाइब। तो चलिए सुनते हैं कुछ लोकल खबरें आज की। तो आज की पहली खबर जो है वो मौसम से रिलेटेड है, मौसम और तूफान का खतरा। जी हाँ, सबसे बड़ी खबर मौसम को लेकर है। इस हफ्ते रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बाद आज ट्रायंगल क्षेत्र में भीषण तूफान और तेज हवाओं के साथ गंभीर चेतावनी जो है वो जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 100 मील प्रति घंटे तक की रफ्तार वाली हवाएं चल सकती है, जिससे बिजली गुल होने की आशंका है। इसलिए सबने अपने आप का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। वीकेंड में अगर आप लोग घर पे ही रहना प्रेफर करते हो, बढ़िया सी कोई मूवी चला दो एंड वीकेंड पे ही यार घर पे पार्टी करो अपने फैमिली के साथ, तो ये आइडिया सबसे अच्छा आइडिया माना जा रहा है। एंजॉय करते हैं अगला ही गाना।

हेलो हाय, कसा काय? आप सुन रहे हैं रेडियो नारा पर निर्वाणा नाइट्स। अगली खबर ये है कि लॉन्ग वीकेंड के कारण रैले दरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट RDU पर यात्रियों का तांता लगा हुआ है। इस वीकेंड 1,22,000 से अधिक लोगों के यात्रा करने की उम्मीद जो लगी है, मैं फिर से एक बार बताऊँ, 1,22,000। जी हाँ, इसलिए जो ट्रैवलर है उनको घरेलू उड़ानों के लिए कम से कम दो घंटे पहले पहुंचने की सलाह दी गई है। मतलब आपको अकॉर्डिंगली प्लानिंग करना है कि आप 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंच जाओ, नहीं तो फिर टाइम पे ऐसा होता है कभी कभी ट्रैफिक भी पड़ सकती है एंड इतने लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स जल्दी पहुंचने में ही भलाई है। फिलहाल एंजॉय करते हैं अगला ये गाना, बने रहिएगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, धर्म सिटी के ऐतिहासिक फिएटविल स्ट्रीट के अश्वेत स्वामित्व में छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए बाउंस बैंक प्रोग्राम के तहत $10,000 तक अनुदान की जो है वो घोषणा की है। मतलब ये जो है व्यापार को, बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए एक योजना है। अगर आपके दिमाग में भी ऐसा कुछ आइडिया चल रहा है तो यू कैन ट्राई इट। फिलहाल एंजॉय करते हैं ये अगला गाना, बने रहेगा रेडियो नायरा पर। एंड कैसे चल रही है आपकी आज की ये शाम?
1: दूध उबालोगे, दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी, आग लगेगी, आग लगेगी।

मजा ही आ गया ये गाना सुन के। नहीं, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, एंड आज पूरा नॉर्थ कैरोलिना तूफान फ्रैन, दैट इज हरिकेन फ्रैन की 30th सालगिरह जो है वो मना रहा है, जिससे 1996 में आज ही के दिन तटीय इलाकों से लेकर हमारे रैलेदरम क्षेत्र में भारी तबाही जो है वो मचाई थी। 30 साल हो गए इस चीज़ को। सो इट्स लाइक मैं यही कह रहा हूँ कि नेचर इज़ द ओनली थिंग जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ डू टेक केयर ऑफ नेचर, नेचर विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ यू। नेचर का ख्याल रखना ये सबकी जिम्मेदारी है, पेड़ को लगाना एंड लाइक सब चीज़ों को मेंटेन करना चाहिए यार, क्योंकि अगली पीढ़ी को हम ये सीख दे सकते हैं कि पेड़ लगाना कितना ज़रूरी है। एंजॉय करते हैं अगला एक गाना।